जम्मै खडेरी ढुर बनख भुर्र उठ्थु। तब तू मोर लाख पानी बनख बिर्सिठ। एक घची के मिलन के बाद वो एक घाम के प्रकाश तुहिन बाप बना कर उड़ा कर फिर से मन से दूर ले जा। ये प्रकृति के नियम हमा मिलन असंभव बा, कारण तू बद्रे मैं धरती। हाँ वो एक दूसर से दूर रख पे करण कब्बुनी और रेना मैया के एक उदाहरण हो दिल के पता। वो एक अटूट मैया के अंश हो दिल के पता।